0: You are listening to Ashraya FM 90, Nadinuppam, Natargopam.
1: इस दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।

0: इस दुनिया में अगर जन्नत है तो बस यही है, यही है, यही है।
1: टाइम चेक। स्टूडियो क्लॉकिल इपूल समय 12 मणि। द टाइम इज 12 ओ क्लॉक।